सांस भर गई, छाती फूल जाती है। सच बोल रहा हूं, सिर भी दुखता है। चल नाचते हैं, अब ये हालात है। दिल कूद रहा है, सिर चल रहा है।